हिर सो हवा मुजतर मुझे कर न दे हिर सो हवा मुजतर मुझे। ओ अल्लाह कीप मी हैप्पी एंड प्लीज्ड इन व्हाट एवर यू आर प्लीज्ड विद, व्हाट एवर इज योर प्लेजर, व्हाट एवर इज योर विल, व्हाट एवर इज योर डिजायर, या अल्लाह लेट मी बी ऑल्सो प्लीज्ड विद योर विल, विद योर प्लेजर, विद योर डिजायर। डोंट लेट हवा वो हिर्स evil passions and desires and greed make me restless, make me bechain, make me chase after those things which are disliked by you and your beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hawa and hirs, hawa wo hirs wala dil badal de, mera ghaflat mein dooba dil badal de.

निकम्मा बस अब मुझे काम का बना दे। मैं कब से हूँ महवे ख्वाब गफलत बस अब जगा दे, बस अब जगा दे।

तेरे गुलिस्तान में सब गुल है, बस एक अगर हूं तो खार में हूं। मुझे भी कुछ फिक्र आखिरत हो, बहुत ही गफलत शियार में हूं। रहा मैं बेकार जिंदगी भर, बस अब तो मशगूल कार में हूं।

आया जगा जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है जगा

तेरे गुलिस्तान में सब गुल है, बस एक अगर हूं तो खार में हूं। मुझे भी कुछ फिक्र आखिरत हो, बहुत ही गफलत शियार में हूं। रहा मैं बेकार जिंदगी भर, बस अब तो मशगूल कार में हूं।